0: जोबन हारिया
1: पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंड माड़िया लै बैठे कर पसारिया चीज कर मन भाव।

आपो आखे अपना जिस ना ही सोचन गड्डी है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संधी है जा रहना ना ही ऐत जग ता कायत गार बहंदी है मंदा किसे ना आखी है।

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: बोला जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई त्याय, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाउ सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आईऐ जस डिठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। पंजा प्यारियां सोह साहिबजादियां, चालियां मुकतियां हठियां जापियां तपियां, जिन्ना नाम जापिया वंड छगया। देख चलाई तेग वाही, देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां। सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। जिन्ना सिंगा सिंगड़ियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चर कड़ियां ते चढ़े आ रिया नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिखी किस्सा स्वासा नाल निभाही, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुकंद मुकंद जपहु संसारा संसार बिन मुकंद तन होए आहार सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता मुकंद मुकंद जपहो संसार बिन मुकंद तन होए आहार सोई मुकंद मुक्त का दाता

जीवत मुकंद मरत मुकंद ताक सेवक कौ सदा आनंद रहौ मुकंद मुकंद हमारे प्राणं जप मुकंद मस्तक निशानं

कहो रविदास अब तृष्णा चूके, जप मुकंद सेवा ताहू के, उपजयो ज्ञान हुआ परगास, कर कृपा लीन कीट दास। कहो रविदास अब तृष्णा चूके, जब

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहौं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारी है, चुन चुन सत्र हमारी मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारी पच्छा, श्री अस तुज जू करियहो रक्षा। राख लेहो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पार कृपा दृष्ट कर फूला।

दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत ताब देह अपारा। जब आकरख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपुनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ।

कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुरे रच दीनी। कहूँ फूल राजा होय बैठा, कहूँ सिमट भयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगर हो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारू कहा।

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो हि बखाने ओ। दोहरा सग

की फतेह। बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुर नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद ना सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधा वैताए। सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार।

गोपाल तेरा आरता जो जान तुमरी भगत करंते तेन के काज सवारता। गोपाल तेरा आरता जो जान तुमरी भगत करंते तेन के काज सवारता। रहाओ दाल सीधा मांगो कीयो हमरा खुशी करे नित जीयो। पनिया शादन निका अनाज मंगाओ सत सीका। गौ भैंस मंगाओ लावेरी

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शॉट बिख बिख खाई, माया मो परम पै भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई, इकी उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई, सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसमदी, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहद शाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो, सज्जन सच्चा पातशाह, शीर्षांद शाह, जिस पास बैठिया सोहिया,

गोविंद चरणन की, सुर नर मुन जन तिन्हु ते दूर, दीन का दयाल माधव गर्भ परहारी, चरण शरण नामा बल तिहारी, दीन का दयाल माधव गर्भ परहारी, चरण शरण

जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। सलो पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दुदाई दाया, खेले सगल जगत, चंगियाया बुरियाया, वाचे धर्म हदू कर।

भक्त जना के संग पाप गवावना। जन नानक सद बलिहारे बल बल जावना। दर्शन प्यासी दिन सरात चितवायन दिन रीत खोल कपट गुर मेलिया। नानक हर संग मीत। दो एकर जोड़ मांगो एक दाना साहिब तुठे पावा। सास सास नानक अरादे आठ पहर गुण गावा। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम्ही सजन सुहेले। रखो रखण हार दला नानक खर के गोल।

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लाख करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला
1: वड़ी वड़ाई जा वड़ा नाओ वड़ी वड़ाई जा सच न्याओ वड़ी वड़ाई जा निचल थाओ वड़ी वड़ाई जाने आला वड़ी वड़ाई बुझे सब पाओ वड़ी वड़ाई जा पुछन दात वड़ी वड़ाई जा आपे आप नान कान कथनी जाए कीता करना सर्व रजाए महला दूजा
0: एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पाणे कड ले एक ना माया विच निवास ए पे आख न जापई जे किसै न रास
1: नान गुरमुख जानिए जा को आप करे परगास पौड़ी ना

पौड़ी नौ तरह निरंकार है नाय लिए नरक न जाइए। जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आख गवाइए। जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनः नीच सदाइए। जे दरवाना पर हर जरवेश करेंदी आइए। को रहे ना पर ये पाइए, को रहे ना पर ये पाइए।

महला पहला हौच आया हौच गया हौच जमया हौच मुआ हौच दिता हौच लिया हौच खटिया हौच गया हौच सचियार कूड़ियार हौच पापुन विचार हौच नरक सुरग अवतार हौच हसे हौच रोवे हौच भरिए हौच तोवे हौच जाति जिनसी खोवे हौच मूर्ख हौच सियाना मोख मुक्त की सार न जाना हौच माया हौच छाया हौ मैं कर कर जंतु पाया हौ मैं बुझे तां दर सुझे ज्ञान में होना कथ कथ लूजे नानक।

सहजो बेबाण, लख सृतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख श्रुति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना किया लिखे आवन जान ना।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार, कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार, कूड़ मियाँ।

0: दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना होई, तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई, बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लखे राव, जात मह जो जोत मह जाता कुल कला भरपूर रहया, ओ सच्चा साहिब सच वाले हो जिन कीते सो पार पया, कहो नानक करते किया बातां, जोकश करना सो कर रहे महला दूजा,
1: जोक सबदं ज्ञान सबदं वे सबदं ब्राह्मण खत्री सबदं सूर सदन सुद सब प्राकृत है, सर्व सबदं एक सबदं जे को जाने फयो, नानक तां का दास है सो निरंजन देव महला दूजा,
0: एक कृष्णं सर्व देवा देव देवाता आत्मा, आत्मा वास दिवस जे को जाने फयो, नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला,
1: कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे गुरु बिन ज्ञान ना होए पौड़ी,
2: पौड़ी पड़े होवे गणगार ता उम्मीद साधना मारिए, जेहा काले काल ना तेवे ना उचारिए, ऐसी कल ना खेड़ी जे दरगे गए हारिए, पड़े तो मैं विचार के विचारे मोह चले सो अगे मारिए।

कहै सहज रंग दर्शन दियो। रहो संत हो टोल साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपसीए मुखों ए पंडित मिठे। बरस एक हो फिरयो कि नैना परचों लायो, कहत्या कहती सुनी रहत को खुशी ना।

गोर सेविय एहन ससहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होए सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है सवना दा विसाहु। सजन सचा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है सवना दा विसाहु। सतनाम श्री वाह।

0: जुग जुग फेर विटाइए ज्ञानी बुझेता है सात जुग रा संतो का धर्म गैरथ वाहो द्वापरथ पै का सात ग्रथ वाहो काल जुग रथ गन का कूड़ गैरथ वाहो महला पहला
1: साम कैसे तम पर स्वामी सच में अच्छे साच रखे सबको ससमावे ऋग कह रहे आप पर भूर राम नाम देवा मैं सूर नए ले प्राचत जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज में जोर छली चंद्राव कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया

चारे वेद होए सचार, पढ़े गुणे तिन चार विचार, भाव भगत करनी सदाए, तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सदगुरु।

सिमल रुक सरायरा आत दीर गत मोच ओई जिया में आस कर जाहिन रस कित फल फिके।

ऊपर को नेमे नक हुए धर धर जू तुली नेमे सगोर हुए अपराधी दुणा नेवे जो हंता मिर्गा है शीश नवाया क्या थी है जर दे कुछ दी जाहे महला।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याहे। फिर अंगद गुरते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद ना सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई आय जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान।